0: लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
1: हराएको मोबाइल एमडीएफ प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
0: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हैन ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फैन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा तथानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
6: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, सञ्चालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811 67 38 87।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हराए।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे, वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस कटरास बाटी, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 3 गते, 10 गते, 17 गते, 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर कैलाली।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगर पालिका को सूचना नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं
5: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं
4: यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौं
5: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि यथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गराउं टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली
2: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
5: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फेमिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
2: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
5: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
2: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
5: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
2: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
5: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
2: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
5: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
2: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुर
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
2: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637072

0: सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोजखबर में यहां क्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tigapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज संविधान दिवस तमाम कार्यक्रम करके मनाईती। सुर पश्चिम प्रदेश सरकार से फिर संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस मनाईती। टीकापुरमा सपा के उद्धार अभियान संचालन। नगर प्रहरी से साउनो भदौ महीनामा 161 सपा के उद्धार। टीकापुर के सहकारी हुकरन से रसुवा बाढ़ प्रभावित हुकरन रकम प्रदान। श्रम संस्कृति पार्टी से रसुवा बाढ़ी प्रभावित हुकरन कैलाली के 55 परिवार है राहत वितरण। टीकापुर के सत्तीमा सुरेश कर्णा इजरायल के राजदूतमा सिफारिश। पूरा खबर। नेपाल के संविधान जारी हुलक 11 वर्ष पूरा हुला अवसरमा आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस मनाइतीबाटै सरकार से हरेक वर्ष आसो 3 गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस के रूपमा मनाइती आयल बा। दिवस के अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित सैनिक मञ्चमा दिवस के रूपमा समेत मनाइती टुडी खेलमा विशेष समारोह आयोजना गरल बा। दिवस के अवसर में संघ प्रदेश और स्थानीय सरकार और राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघ संस्थाओं का फे तमाम कार्यक्रम आयोजन करती बाटे। विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिज्ञ नियोग फे संविधान दिवस के अवसर में कार्यक्रम करती बा। 2072 असोज 3 गते तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव से नया बानेश्वर स्थित के तत्कालीन संविधान सभा भवन से नेपाल के संविधान जारी हुलक घोषणा करल रहें। रसुवा के भोटेकोशीमा बाढ़ प्रभावित ठुकरन तमाम क्षेत्र मन से सहयोग जुटेबा। सरकार से बाढ़ पीड़ित ठुकरन के सहयोग केलक आह्वान करल संगे तमाम संघ संस्था तथा व्यक्ति हुकरन सहयोग करना क्रम चलती रहल बा। सहयोग हुकरन सरकार से प्रधानमंत्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा कर सकल बा। कोषमा टीकापुर क्षेत्र के सहकारी हुकरा फे सहयोग रकम जम्मा करल बाटै। अपना हुकरन के छोट सहयोग से बाढ़ प्रभावित हुकरन सहयोग पुग्ना गहके सहयोग करलक ओ सहकारी से समेत करतियाल बताइल बा। लक्ष्मीनारायण बहुद्देश्य सहकारी संस्था नारायणपुर के लक्ष्मीनारायण बहुद्देश्य सहकारी संस्था के अध्यक्ष कपूर सिंह कड़ाइत फे बाढ़ प्रभावित हुकरन सहयोग करलक बटै। वस्तुत लक्ष्मीनारायण सहकारी जस्ते सामुदायिक सहकारी संस्था शक्ति फे बाढ़ प्रभावित ठुकरन केलक सहयोग करल बा। सहकारी सेवापन सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग करल बताइल बा। सहकारी के व्यवस्थापक दीपक वैद्य के अनुसार सहकारी से 51,211 रूपया प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा जमा करल बा। उसक जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था टीकापुर से फे बाढ़ प्रभावित ठुकरन सहयोग कर बताइल बा। सहकारी से तीज में दर खैना कार्यक्रम के लक्ष्य टैल 15,000 रकम तीज कार्यक्रम में खर्च नहीं करके बाढ़ प्रभावित ठुकरन के लक सहयोग पठायल सहकारी के व्यवस्थापक छविलाल जैसी जानकारी दिले बाटें। श्रम संस्कृति पार्टी रसुवामा बाढ़ प्रभावित परिवार हुकरन राहत वितरण करल बा। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 के 55 जहन हे राहत वितरण पार्टी से करल जनाइल बा। वहां हुकरा प्रति समेत व्यक्ति 25 किलो चाउर उस्तक 2.5 केजी दाल 1 केजी नोन उस्तक 1 लीटर तेल वितरण करल बा। एक साथ ही 150 बाल बालिका हुकरन झोला कुछ सेंटर प्याड वितरण करल बा। कल से कुछ व्यक्ति हुकरन औषधि के लग 2,000 रूपया के दर से नगद प्रदान करल पार्टी के केन्द्रीय सदस्य सरस्वती चौधरी बटोले बाटे। वितरण कर गेलक राहत में कुछ सहयोगी डाटा हुकरन से संकलन करल कुछ पार्टी के प्रतिनिधि तथा पार्टी की ओर से प्रदान करल केन्द्रीय सदस्य चौधरी बटोले बाटे। श्रम करना गेलक व्यक्ति हुकरन बाहर से अभी फिर संपर्क में नहीं अलग वहां हुकरन के घर में समस्या रलक वो समस्या समाधान करना कुछ सहज हुए कहके राहत वितरण करल। राहत वितरण कर पाके खुशी लागल सदस्य चौधरी बटोले बाटे। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आँखाका रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना। नेपाल नेत्रज्योति संघ, गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204, स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू, सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
2: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ, कस्तो गाह्रो हुन्छ। पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन, म त जन्म परे जस्तै लाग्छ।
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी, 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
6: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
5: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको धारा जनानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वाडा नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन यही मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुष 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धारा जडानका लागि आवेदन दिन हुन अनुरोध छ। याद राख्नुहोला, पुष 1 गतेपछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन। थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 091-561-449 सम्पर्क गर्नुहोला। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था। विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। कैलाली के टिकापुर नगरपालिका से चालू आर्थिक वर्ष के 2 महिनामा घर तथा तमाम संरचनामा फसलक समेत 161 थो सपुवा के उद्धार कर गिलबा। सपुवा के तोकाई से हुईना जोखिम न्यूनीकरण तथा सपुवा संरक्षण करने उद्देश्य से टिकापुर नगरपालिका के से संचालन करलक सपुवा उद्धार अभियान अंतर्गत पालिका से नगर प्रहरी के टोली से 161 थो समेत सपुवा उद्धार कर बता गिलबा। टिकापुर नगरपालिका से गैल जेठ महिनामा समेत 10 जहनमा नगर प्रहरी समुदायमा समेत स्वयंसेवक हुकुरन सपा उद्धार सम्बन्धी तालिम दैगिल प्रहरी से समेत घर तथा औरो संरचनामा समेत फसलक सपाके उद्धार अभियानमा लागल बताइल बा। नगर प्रहरी से 57 विषालु समेत 98 विषालु सपाके उद्धार करगिल बा। उद्धार करगिल सपुवामा 3 थो मयूर अस्तका 1 थो रसर भाइपर नामक समेत लोकमुख जातके सपुवा हो, 2 थो समेत क्याट स्नेक नामक सप रहल बताइल बा। उसके उद्धार करगिल सपुवा समेत कमन करेट उसक करेट अजिंगर उसक कमन कोब्रा ब्ल्याक कोब्रा किंग कोब्रा ओ समेत ब्यान्डेन करेन्ट लगायतके प्रजातिके सपुवा रहल बताइल बा। विषालु तथा समेत गैर विषालु दुन प्रजाति के सपो के उद्धार करगिल नगर प्रहरी से जनाइलबा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर में टीकापुर में माध्यमिक तह कक्षा 11 औ 12 स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगिता हुआ। टीकापुर में कक्षा 11 औ 12 में संचालित 9 विद्यालय सहभागिता जनाएल रह। जलवायु परिवर्तन हो विपद व्यवस्थापन में स्थानीय सरकार की भूमिका विषय वक्तित्व कला प्रतियोगिता में सगुन विद्या निकेतन टीकापुर के आवेश रिमाल प्रथम, आरएमए स्कूल टीकापुर के अस्मिता खत्री द्वितीय, कर्णाली मावी टीकापुर के क्रिस्टिना पोखरेल, ओ समेत जनजागृति मावी सीतापुर के सपना भंडारी तृतीय हुईलबाट, त्रिभुवन मावी बटनपुर के लिसन ओड से सांत्वना स्थान हासिल करलबाट, प्रतियोगिता में समेत विजेता विद्यार्थी हुकरा नगद तथा प्रमाणपत्र प्राप्त करलबाट, कर्णाली मावी टीकापुर के प्राध्यापक धर्मराज शर्मा से के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि टीकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा प्रमुख नरेश अवस्थी से विद्यार्थी उकरण के मजा बोलको पाचक समय में देश में बढ़ती रलक कारण समेत दुख में पर्लक उकरण यी विषय हे कार्यक्रम के शीर्षक समेत बनाएल बतोले बाट। कार्यक्रम संचालन जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय के प्रधान अध्यापक रघुनाथ उपाध्याय कर्ल रहें। संघ कर्णाली मावी टीकापुर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनागिल बा। दिवस के अवसर में तहगत रूप में विद्यालय स्तरीय हाजी जवाब प्रतियोगिता हुई बा। कक्षा 11 औ 12 के प्रतियोगिता में 1200 समूह मध्य वीरेन्द्र विकास समूह प्रथम, सुदर्शन महतारा के समूह दूसरा स्थान, इपेन्द्रा बुढ़ा के समेत वृष समूह तेसरा स्थान प्राप्त कर रहा। कक्षा 9-10 के प्रतियोगिता में खगेन्द्र विका के सगरमाथा समूह प्रथम, दिनेश डंगौरा के समेत च्याउ समूह दूसरा स्थान, सुभाष चौधरी के मकालू समूह तेसरा स्थान हासिल करल बताइल बा। कक्षा 6-8 के प्रतियोगिता में बड़ी मालिका समूह प्रथम, अपी समूह दूसरा स्थान, मकालू समूह तेसरा स्थान हासिल करल बा। विजेता विद्यार्थी उकरण स्टेशनरी सामग्री पुरस्कार प्रदान करगिल बा। सुरपश्चिम प्रदेश सरकार से संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस 2083 भव्यता के साथ मनाइना निर्णय करल बा। मुख्यमंत्री खगराज भट्ट के अध्यक्षता में बैठल बैठक से संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस से प्रदेशभर तमाम कार्यक्रम सहित भव्य रूप में मनाइना निर्णय करल के हो। बैठक से मुख्यमंत्री भट्ट से के अध्यक्षता में तमाम पदाधिकारी सहित 23 सदस्य मूल समारोह समिति गठन करगिल बा। आज बिहान के 7 बजे आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय में समूह के समेत मूल समारोह आयोजन करगिल बा। मूल समारोह में प्रदेश के प्रमुख, मुख्यमंत्री, सभामुख, मंत्री तथा राज्य मंत्री हुकरा, सचिव हुकरा, संघ प्रदेश और स्थानीय तह के कर्मचारी, सार्वजनिक तथा संघ संस्था के प्रतिनिधि लगायत के सर्वसाधारण हुकरण के सहभागिता रहना बताइल बा। खोज खरमाए घरी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
7: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
8: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
7: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ है पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
9: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार

0: कागजात हराएको सूचना। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर एकका कमला सुडारीको पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कशीट लगायतका कागजातहरू शुक्रबार दिउँसो 12 बजेतिर टिकापुर खडकचोकदेखि जमरा पारी पेट्रोल पम्पसम्म जाने क्रममा बाटोमा हराएकाले पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नम्बर वा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क नम्बरहरू 97-64-26-70-90 र 98-15-60-67-05।
1: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। कैलाली के टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 67 के सुरेश कुमार कर्णा इजरायल के राजदूतमा सिफारिशबाट सट्टी घर हुके लम्बा समय से काठमाडौँमा व्यवसाय करते आयल कर्णा कम्प्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल क्यान के पूर्वाध्यक्ष फेबाट कालिक बैठक परिषद के बैठक से कर्ण सहित 13 देश के राजदूतमा नियुक्त केलक सिफारिश करगिल रह सरकार से भारत केलक निश्चल नाथ पाण्डे अमेरिका केलक चिरंजंग थापा उसतक चीन केलक कल्याण राज शर्मा सिफारिश फिलबाट सरकार से नियुक्त केलक सिफारिश करलकमा डाक्टर निश्चल नाथ पाण्डे उसतक भारत डाक्टर कल्याण शर्मा चीन अस्तक चिरंजंग थापा संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जंगबहादुर राणा बेलायत अस्तक जिज्ञान कुमार थापा जापान के लाख सिफारिशबाट अस्तक प्राप्ति शेरचन स्पेन अस्तक सरु जोशी जर्मनी डाक्टर पद्मासी राणा ओमान चोडामणि खरेल मलेसिया अस्तक प्राध्यापक डाक्टर संगम श्रेष्ठ दक्षिण कोरिया डाक्टर मञ्चल झा अस्तक श्रीलंका ओसमेत गिरिबहादुर सुनार साउदी अरेबिया केलक सिफारिश करल बताकिल बा। यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। आज संविधान दिवस तमाम कार्यक्रम करके मनाईती सुरपश्चिम प्रदेश सरकार से फिर संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस मनाईती। टीकापुर में सर्प उद्धार अभियान संचालन नगर प्रहरी से साउन भदौ में 161 सर्प के उद्धार। टीकापुर में सहकारी से रसुआ के बाढ़ प्रभावित उपकरण रकम प्रदान श्रम संस्कृति पार्टी से रसुआ बाढ़ प्रभावित उपकरण कैलाली के 55 परिवार राहत वितरण। टीकापुर के सट्टी के सुरेश कर्ण इजरायल के राजदूत में सिफारिश। लीका बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुनते रहिए। राम राम।
2: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
3: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
2: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
3: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
2: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
3: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
2: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
3: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
2: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
3: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
2: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8-10 बजेसम्म र साँझ 4-8 बजेसम्म।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72।
4: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
5: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
6: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकट

0: ई लड़का के कब्बू कापी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ई बुढ़ालिक में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई, कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटाका था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
5: तब एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु, म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
4: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ,
5: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो म कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
4: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकेछु तयार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
6: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्ना त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
3: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासवर्ड साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
2: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
4: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेक्ल।
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत, का कैन हो का?
4: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: फिर कबू का पिए रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर बर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं देंग वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

हार्दिक सुनचाँदी पसलमा छक्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चाक्की, पेन्डल, बाला, औंठी, चन्द्रमा।

0: तत्थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्भिस एल्भिरा ट्रेडर्स, सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811638887।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9046747417।
1: अरेला सुन चांदी पसल में छड़की तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चपकी, पेंडल, बाला, औठी, चंद्रमा, कांटा, नौगेड़ी जस्ता विभिन्न डिजाइन का गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्य में बनाइन्छन्। एक पटक सेवा करने मौका अवश्य दिनुहोला।
2: अरेला सुन चांदी पसल बलभद्र चौक टीकापुर, एलएन मेडिकल अगाड़ी, संचालक खुमराज सुनार, संपर्क मोबाइल नंबर 9810625347।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में, रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिकला झोला है मरमर फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा सड्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेन्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। लक्ष्मी आभूषण भण्डार, सिद्धार्थ चोक, टिकापुर, कैलाली, संचालक प्रकाश भण्डारी, सम्पर्क नम्बर 98 48 53 61 95।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बा का सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 98 6 56 92 0 26

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजेक 5 बजे थारूभाषक खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम आपनौकराब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रोमा फेस सुन्दी रहल बाटिए खोज खबर शुरू गरी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से संविधान के अक्षर और भावना दुनू प्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहलक प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के कहाई संविधान सबको नागरिक के अधिकार सुनिश्चित कलक मुख्यमंत्री भट्ट के कहाई कृषि कार्यक्रम के लागि रानी जमरा कुलहरिया सिंचाई आयोजना 6,93 जना कृषक आगामी 3 दिनसम्म सुदूरपश्चिम में भारी वर्षा के संभावना कम ओ टीकापुर में आज से न्यौल्या शुरू आप खोज खबर विस्तारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट नेपाल के संविधान से जनता के सर्वोच्चता कायम करती सबको नागरिक के अधिकार सुनिश्चित कलक बटुलबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आयोजना कलक संविधान दिवस के मूल समारोह संबोधन करती मुख्यमंत्री भट्ट संविधान नेपाल के सबको जात जाति भाषा धर्म व संस्कृति मन्ना नागरिक के अधिकार सुनिश्चित कलक बटुलबाट वहां नेपाल के संविधान लोकतांत्रिक पद्धति के विकसित दस्तावेज हुईलक उल्लेख करती विभिन्न मत और विचार बीच सहमति खोजना राजनीतिक आधार के रूप में संविधान लिहपना धारणा व्यक्त करलबाट मुख्यमंत्री भट्ट संविधान के मर्म व भावना अनुसार सबको प्रकार के राजनीतिक सहमति कायम करती मुलुक अग्रगमन के डगर में आग बढ़ना आव के आवश्यकता रहलक बटुलबाट वहां संविधान से प्रत्याभूत कलक अधिकार के संरक्षण व कार्यान्वयन करती लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता तथा समावेशी व्यवस्था थप सुदृढ़ बनाई पर्ना मन जोर दिलबाट टीकापुरमा आसे न्याउले खेल शुरू करगिलबा टीकापुर सांस्कृतिक समाज के आयोजनामा आसे न्याउले खेल शुरू करगिल खो विगत 6 वर्ष थेसे टीकापुर के खुल्ला मंच पुरान हाट बजार में हरेक शनिवार संचालन हुईटी ऐलक न्याउल्या खेल बरसात के समय मन रुआकल रह बरसात लागल पाछ असार मसांत से भदौ मसांत सम्म 2 महीना न्याउल्या खेल रोक गिलक व आज थे से फेर न्याउल्या शुरू हुईलक टीकापुर सांस्कृतिक समाज के सचिव बलबहादुर बोहरा जानकारी देलबाट आपठेसे हरेक हप्ता के शनिवार न्यावले खेल संचालन हुईना हुईला कुंवर से खेल प्रेमी हुकना उपस्थिति के लागि फे सचिव बोहरा आग्रह करलबाट हाल देशभर मनसूनी वायु के संग पश्चिमी वायु के फे आंशिक प्रभाव रहलबा मनसून के न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान के दक्षिण ओहर रहलबा हाल देशभर साधारणतया बद्री लागलबा मधेश बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के 1-2 ठाउँ में मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का थेसे मध्यम वर्षा हुईटी रहलबा आज रातकन देश के हिमाली ओ पहाड़ी भूभाग मन साधारणतया बद्री तथा तराई भूभाग मन आंशिक बद्री लगुयाबा कोशी बागमती गण्डकी ओ कर्णाली प्रदेश के हिमाली भूभाग के डांचे ठाउँ तथा लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग के 1-2 ठाउँ मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा ओ हिमपात के संभावना बा कोशी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाउँ मन ओ कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के 1-2 ठाउँ मन मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा देश के तराई भूभाग के 1-2 ठाउँ मन मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहलबा तर ऐना 3 दिन हन सुदूरपश्चिम मन भारी वर्षा के संभावना नै रहलक मौसमविद संजीव अधिकारी जानकारी देलबाट रानी जमरा कुलहरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 में संचालन हुईना कृषि कार्यक्रम के लागि 193 जना कृषक हन छरोट करलबा एकाई केरा खेती सहयोग उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 71 किसान सहयोग करलख 60 हेक्टर क्षेत्रफल लक्षित करगिलक कार्यक्रम के लागि 86.6 हेक्टर के माग ऐलसेफे 84.3 3 हेक्टर मनकेरा खेती कर किसान छनौट कलक आयोजना जनैलबा वस्तकना मुक्त कमैया तथा दलित कृषक के लागि तरकारी च्याउ तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत 122 जना किसान छनौटबाट ऊ कार्यक्रमका लागि 123 ठो आवेदन परल रह तरकारी ओहर च्याउ तथा तरकारी खेतीसँग उन्नत कुखुरा बंगुर बाख्रा वा भैंसी पालन लगायतकै कृषि गतिविधि सञ्चालन कर्जिना इकाई जनैलबा छनौट हुइल कृषकन सम्झौता गर आयोजना आह्वान करलबा। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछ ऐनिनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98442 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
5: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
6: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
7: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
8: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
8: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
7: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
8: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095 43 893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कैलालीके गोदावरी नगरपालिका 3-2 तिघ्री मन बैटडीके 39 वर्षीय हिमाल बहादुर चन्द शनिबार बिहान मृत फेला परलबाट इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेटीके डीएसपी हीरा सिंह महरा चन्द घोप्टो पर्लक अवस्थामा भेटकिलक पुष्टि गर्नबाट मृतक केशव सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ढैगिल्बा ओ घटनाबारे थप अनुसन्धान हुइतिरलक प्रहरीसे जनाइगिल्बा। उहाँके अनुसार मृतक केशव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ढैगिल्बा, थप घटनाबारे थप घटनाबारे थप अनुसन्धान हुइतिरलक प्रहरी से जनाएकिल्बा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संविधानके अक्षर भावना दुनुप्रति सरकार पूर्णपतिबद्ध रहलक बटुलबाट संविधान दिवसके अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह मन समिति आज आयोजना कलक कार्यक्रम मन उहाँ सहितके रगडसे लेख गिलक संविधान हाम्रो कामलेका पूरा करविकल प्रधानमन्त्री शाह कल संविधान प्रति निष्ठा व याकर पालनामा हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धबाटी यी मुहार बाचा आजसे फेर दोहोर्याइटु संविधान जारी हुइलक दिन हरेक वर्ष आए तर संविधान पूरा हुइना दिन हाम्रो अपनह लान परत हरेक इमानदार निर्णय से हरेक पारदर्शी नियुक्ति से नागरिक के घर दैलोमा पुग्न हरेक सेवा से जनता सुशासन विकास समृद्धि व सामाजिक न्याय मंगलक बटुइटी वहाँ सरकार के हरेक कदम उह आकांक्षा उहर केन्द्रित रहलको रहना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नबाट प्रधानमन्त्री शाह प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र मानव अधिकार हो कानूनी न्याय हमार लाग शर्त नि हो क हमार राष्ट्रिय जीवन के आधार फिलक बटिलबाट वहाँ कल यी संविधान नेपाली जनता से एकठो बाचा करलबा विधि विविधता बीच के एकता सक्कु प्रकार के विभेद असमानता के अन्त्य विकास समृद्धि एवं सामाजिक न्याय के आधार में समतामूलक समाज के निर्माण हो एकठो बाट हाम्रो कब्बुफे बिर्सनी हुएट संविधान जत्राफे मजा हुईल से फे उही चलैना हाट ईमानदार व अनवरत क्रियाशील निहिल कलसे उ कागज के खोस्ता बन स्याकट प्रधानमन्त्री शाह कल यी सुबाटी हो अन्त्य नै हो भ्रष्टाचार व दण्डहीनता के जरा गहिरबा तर ऊ जरा उखेलना हाट आफ झन बलगरबा आमिन ठ्यूरबाट विकास के लाग सुशासन अनिवार्य पूर्व शर्त हो कना बातमा सरकार सचेत रहलबा वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर प्रशासनिक संरचना के उपयुक्त आकार निर्धारण भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलता प्रशासन यन्त्र मन राजनीतिक तटस्थता सरकारी एवं सार्वजनिक पदमा योग्यता के आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गर्लक उहाँके कहाइबा। रसुवाके भोटेकोशी मन भडौं दश मन ऐलक बाढ़ी पा छ सम्पर्क विहीन हुइलक उपरके त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजना मन कामदार के खोजी के क्रम मन अडिट टीम सुरुङ से 11 सफ निकारगिल्बा नेपाली सेनाके प्रवक्ता तथा सहायक रठी राजाराम बस्नेत के अनुसार सुरुङ भित्र जालीमा अलझलको हिलामा डबगिलक अवस्थामा ऊ सफ फेला पर्ला खुइट आयोजनाके प्रतिनिधि सहितके संयुक्त उद्धार टोली शनिबार ऊ सफ बाहेर निकर्लक हो बाहेर निकारगिलक सबके थप व्यवस्थापन तथा पहिचान के प्रक्रिया आग बढ़ा जैनाबा बारी पाछ आयोजनामा कार्यरत कुशमनी सम्पर्क विहीन हुइल रहल हुकहन के खोजी के लाग सुरुङ तथा आयोजना स्थल में उद्धार तोरी परिचालन कै गिल्बा प्रवक्ता बस्नेत के अनुसार अब सम्पर्क विहीन अन्य मनिन के खोजी फे जारी रहलबा। खोज खबर में फेरफे विश्राम पाछ ऐनिनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: आँखाका रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना नेपाल नेत्रज्योति संघ गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204 स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
10: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
11: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
10: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
11: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
10: अब त म ढुक्क
3: मिलन आल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनराज भाट
11: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
12: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
13: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
14: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
12: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
14: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
13: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
15: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा एसियाली खेलकुदके 20 संस्करणमा नेपालके मार्च पास शुरू हिल बा उद्घाटन समारोहमा नेपाली खेलाड़ी तथा पदाधिकारी हुकनके मार्च पास शुरू हिल खो नागोया सिटी स्थित मेजुहो पार्क एक्लेक्टिक्स स्टेडियम मन हुइटिरलक उद्घाटन समारोहमा नेपाली टोली राष्ट्रिय झण्डा सहित मार्च पास गर्लक हो नेपाल से आर्चरी एथलेटिक्स बैडमिंटन बक्सिंग क्रिकेट साइक्लिंग गोल्फ जुंगो कबड्डी कराते राफ्टिंग और कैनोइंग स्केट रेन स्केट बोर्डिंग सॉफ्ट टेनिस एक्साइज पौड़ी टेबल टेनिस टेक्नांडो टेनिस भलीबल कुश्ती व उष्मा खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करती रह यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जेती जेती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से संविधान के अक्षरों भावना दुनु प्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहलक प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के कहाई संविधान से सबको नागरिक के अधिकार सुनिश्चित करलक मुख्यमंत्री भट्ट के कहाई कृषि कार्यक्रम के लागि रानी जमरा कुल्हरिया सिंचाई आयोजना छनौट करल 193 जना कृषक ऐना 3 दिनसम्म सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा के सम्भावना कम ओ टिकापुर मन आश्य न्याउले खेल शुरू लिता अबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे

0: भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि दुरु दुरु।
1: के गरौ त म, यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके, तर निकै हुन्न।
0: दाई बरु एक पटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि, के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि।
1: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एक पटक।
2: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 0915600095, मोबाइल नम्बर 98484-27359।
3: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
5: विश्रामपछि खोज खबरमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले शहीदका रगतले लेखिएको संविधान हामीले कामले पूरा गर्छौं भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, संविधानको निष्ठा र यसको पालनामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं। म यो वाचा आज फेरि दोहोर्याउँछु। संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउँछ, तर संविधान पूरा हुने दिन हामीले आफै ल्याउनु पर्ने। हरेक इमान्दार निर्णयबाट, हरेक पारदर्शी नियुक्तिबाट, हरेक नागरिकको घर दैलोमा पुग्ने हरेक सेवाबाट संविधान ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय मागेको बताउँदै उहाँले सरकारको हरेक कदम त्यही आकांक्षातर्फ केन्द्रित रहेको र रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। खुद खबरमा अब पालो जनआवाजको। आज संविधान दिवस संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा देशैभरि मनाइएको छ। आजको जनआवाजमा हामीले 2072 जारी भएको संविधान पछिको परिवर्तनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ भनी केही नागरिकलाई सोधेका छौं।
6: महँगी हो ज्याला चाहिँ टोलेन्सी होइन चाहिँ महँगी आकाशी अब ज्याला कम्बा न्यून बा एकदम उन्हें मैचिंग नहीं है।
7: मो नाम रीता चौधरी, जानकी पास अमौरी। हमारी संविधान जो अलस तो हमारे महिला के लाग ढेर मजा का बाई। हमारे महिलाओं के एक चुटी आगे फिर बढ़े पहले आती है, एक चुटी महिला के हक अधिकार थे करना से पहले से एक चुटी ढेर पावे। हमारे लेती फिर बाटी पहले तो हमारे एक चुटी अपन घर से बाहर वैसी जाए नहीं पाई, अपन मन में लागल बात नहीं धरे पाई। अब ये संविधान अलस तो हमारे एक चुटी घर से बाहर जाती को कार्यक्रम में सहभागी हुई थी, ओमे अपन बात धरे पाई थी अपन, और हमारे बोलना विकास मिला भाई नया संविधान आयल था।
8: मोना वासी चौधरी, जानकी पांच अमौरी। पहले लेके अब महिला के संगठन सहभागी कह रहे कई सरकार के नीति अनुसार कथे 33% महिला निभारे ना हुई पढ़ना। पहले जैसी कार्यक्रम हुए गांव में तो महिला के सहभागी नहीं रहे, उपभोक्ता समिति गठन करे बेर फिर पुरुष गेल रहे हर ठाव में स्कूल में संघ संस्था में जम पुरुषन के गल सहभागिता रहे। अब संविधान तब से कह दो महिला के फिर सहभागी सकुठाओं में 50% जैसी तो अनिवार्य हुई जाए। 33% कहल मनुष्य 50% सब महिला के सहभागी रह
9: काली देवी चौधरी, जानकी पांच गांव मौरी। पहले से सब चीज फायदा हुई हस लागत, सब चीज महान फायदा हस लागत कह दो सब मनाई फिर पहले से बहुत परिवर्तन हुई गिलाती। पहले मनाई का बुझी का नहीं बुझी, अब का मनाई बहुत बुझती के पड़ल। वो सब ठाव में पहले अपन परचय और सही बताइना फिर एकदम गार हो लागे, समाज में जाइना फिर उठाओ एकदम गार हो लागे, कुछ पढ़ वढ़ लेना फिर एकदम गार हो लागे। अब बेटो अब कोनो कार्यक्रम में जाइबो कोनो संघ संस्था में जाइबो तो पढ़ वढ़ लेना फिर एकदम इच्छुक जागे हस करत, उठाओ में पुग जीबो तो और कोनो बात

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई को यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ
5: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
6: काजान छै उडने चरी बिन्द्रा त भौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी
7: झल्को आउँदो बाह्रै मास दिनकाटु म क्यारी बाटो हेरी बस्याकी छ घर मेरी प्यारी
6: एकडाली बाजगुर आउँछको एकडाली साजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको

0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
2: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालयको अनुरोध। जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सड़क किनारमा पशु चौपाया नबाँध्न र सड़क किनारमा मल वस्तु नथुपार्न अनुरोध गर्दछौ। साथै सड़क किनारमा पशु चौपाया बाँधेर ढुङ्गा बालुवा माटो ग्राभेल मल थुपारेर दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी थुपार्ने व्यक्तिले लिनुपर्नेछ। जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लायकपुर।
3: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जै भो? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेक्ल?
4: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का?
3: मिस्तरान बर्जन हुकना घर हेरो ना, कटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो न कबू कहुरा घुम जाए त थाहा पाए।
5: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848-51-43-26।

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: दाई बेड्ड भूख लाग्ता, खाजा बाकी नै? ए काकी फे आइल बाटी, राम राम काकी।
2: राम राम हो नानी, मजा बाटो ऐसनले छाइट भारी हो स्याकल बाजे, आप हली भुवास कर दिए परल है। समय में भुवास कर दिल से आपन जिम्मेवारी फे वरिना और जनक बात फे सुननी पर्ना।
3: आ दिदी फे ऊ बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुवास कर दे मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्त फिर फिर डोरिया नी चाहू दीदी मई चाह ई बाल विवाह कर नी चाहू ई बाल विवाह निकरण दीदी।
4: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से डायो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत ऊ हिंसा के शिकार बन सकत उही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकथिस ऊ रोजगार फिर नहीं पाए ओ गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन कराई लसे 3 वर्ष सम कैद ओ 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकत ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
2: टीकापुर नगर पालिका ओडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।
5: कागजात हराएको सूचना। टीकापुर नगर पालिका ओडा नंबर 1 का कमला सुडारी को पासपोर्ट कक्षा 8, 10, 12 का मार्कशीट लगायत का कागजात शुक्रवार दिवसो 12 बजे तीर टीकापुर खड़गचोक देखि जमरा पारी पेट्रोल पंप सम्म जाने क्रम में बाटो में हराया पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नंबर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम में बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कार को व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क नम्बरहरु 97 64 26 70 90 र 98 15 60 67 05।

0: कापिए रहिथक अभी पेन्सिले रहिथक अबु झलै फटाका आजिथक का कना हो बाबा फिर ओस्ता बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठक कबू पेंसिल हेरा कई ठक कबू झोले फटा कई ठक बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लबाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: नेपालगंज मेडिकल कलेज मा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागु औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
4: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबारका दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागु औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
3: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला
4: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज